सुबमन धरम रैक्थर रंगाका अदमटिकियान मुकुतने ऐति तिंगो आठ मैसेज नोकर को हमें द मां कियान नं मागे ही न माटे तिबुना नं होदाई गेला ही तने वा माता सही मटा तादर एक्टिय नाना तोरे थोंचक ने तो यह एक कियवान न मामा सया माटे मागे विदिया टे एक याने आगे आवधि माटे मांगवेन पुलवांग विदिया टे चीवात वेन तिबुना नं मांग मेलिया ने वही ने एक में बित रखवे ऐते वाली अद्धि ओया वा कियवात दी मांग हरिया सया का पाबो लसन गयानो लामे ओ सुंदर महीन इटुएन चुट्टा कितर फरक्वेनो हीना लसन निसामाई